0: पी गई
1: बाजी।
0: रो गया वल्ले दिल मेरे नू ला के चली गई भुल दी नहीं भुल जानी दिलों भुला के चली गई।

आख दे ने लोक ही काठो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानिया हड़ एकता दा बन के कटामाए असी धरती बसनाए बन के कटामाए असी धरती बसनाए धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने वेलड़ा ने मान

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अच हंजू केरे रोवे, अच हंजू केरे रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्तरो लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाणे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाणे जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नूं हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नूं हथ मार ला रूबी, तेरे केड़ा छत तों आणे, तेरे के

0: टोनी जी जी आया नू।
1: सत्कारयोग साथियों, मैं तुहाडे नाल अपना गीत सांझा करन जा रहा। इतों उड़ जा कालिया कावां वे, इतों उड़ जा कालिया कावां वे, तनु कितों चूरियां पावां वे, तनु कितों चूरियां पावां वे, लोकां पाणे आई आजादी साड़ी ता होई बर्बादी ए, बै जा तन्नू दुख खोल सुनावां वे, इत्थों उड़ जा कालिया कावां वे, तन्नू कित्थों चूरियां पावां वे। मजदूरां बलूरां दी सुनदा कोई ना, माड़े नू मिलदी किते टोई ना, कली जिंद कूंज वांग कर लावे वे, इत्थों उड़ जा कालिया कावां वे, तैनू कित्थों चूरियां पावां वे। असी तने अपना बेच के डंग टपाउंदे हां, सोने दी चिड़ी देवासी फिर भी अखवाउंदे हां, कदों वेड़े आवणगियां ठंडियां छावां वे, इत्थों उड़ जा कालिया कावां वे, तैनू कित्थों चूरियां पावां वे। इत्थे संदे पै ने डंग दी रोटी दे, की दसीए तैनू हालात किस्मत खोटी दे, दस कित्थों अन्न लिया के रोज पकावां वे, इत्थों उड़ जा कालिया कावां वे। असी टन्ना दे टन पैदा कर दे कपाहां दे, फिर भी रहंदे कर जाई शां दे, देके तरवासे दिल नू पई परचावां वे, इत्थों उड़ जा कालिया कावां वे, इत्थों उड़ जा कालिया कावां वे, तैनू कित्थों चूरियां पावां वे। टोनी तन दा तंदूरत पाउंदे हां, टोनी तन दा तंदूरत पाउंदे हां, दिन आसा आसरे पै लगाउंदे हां, फिर भी तेरे लई करदे हां दुआवां वे, इत्थों उड़ जा कालिया कावां वे, तैनू कित्थों चूरियां पावां वे, तैनू कित्थों चूरियां पावां वे। धन्नवाद जी।
0: राम प्रकाश टोनी जी तो बाद हुण मैं मोहाली वसदी साडी शायरा मनमोहन कौर जी नूं सद्दा देना है कि ओह अपनी रचना लेके हाजिर होण। मनमोहन कौर जी अपने दिल दीआं गहराईआं तों अपने रचना लेके हाजिर हो रहे ने। मनमोहन कौर जी, थोड़ा स्वागत है।
2: मैं जानदी हां कि मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, मैं जानती हाँ मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, तेरिया कंधा रुदन कर कर सिलाबियां गईयां ने, तेरिया कंधा रुदन कर कर सिलाबियां गईयां ने, तेरे तन दे कपड़े पेपड़ियां बन बन उतर रही ने, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, तेरी ममटी उपर पंछी बैठ राग बिरहा अलापदे ने, तेरी ममटी उपर पंछी बैठ राग बिरहा अलापदे ने, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, मेरे बिना तेरे ताले तो लैके इसी तक चंगाले गए ने, हुण अगरबत्ती दी नहीं मिट्टी तोड़ दी हवांक आउंदी है, हुण अगरबत्ती दी नहीं मिट्टी तोड़ दी हवांक आउंदी है, डोगी गेट ते सिर सुट के सौंदा जा बुथी उपर चुक्की रोंदा है, डाकिया डाक सुटन वक्त शरबत जा चान उड़ीकदा है, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, तेरे बंद देख तेनू बंद देख कोई किराए लई मंगदा कोई खरीदना लोचदा है, तैनू बंद देख कोई

तन इकट्ठा करन दिखा तेरे सच झूठ तू मूल न जाने। तन इकट्ठा करन दिखा तेरे सच झूठ तू मूल न जाने। ठगी फरेबी करन देवल भी को संदूर निरबी पाने। कोमल मन ते शुद्ध हिरदे विच, कोमल मन ते शुद्ध हिरदे विच रब्बी रंग दहसदा मुखड़ा

असां कदे जोश विच आके अपना होश नहीं खोया, असी अग अंदर बाल दे आ, कदे आक्रोश नहीं खोया। हुण होणा जो तू वेखी मैं ता घमसान दा।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

दास सच्चा वही तो है भगवान का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।